ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। आज शनिवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 16वीं तिथि। तदनुसार 6 जून 2026 सुबह के 5:53 और 34 सेकंड हुए हैं। हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, पर उससे पहले आइए आपको दे दें आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का एक छोटा सा विवरण। 6:05 पे प्रस्तुत किया जाएगा कार्यक्रम सुप्रभात। 7 हिंदी में समाचार। 7:05 से लेकर 9 तक समय होगा गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर के प्रसारण का। 9 दिल के तराने गाने नए पुराने। 10 हिंदी में समाचार। 10:05 पर वेस्टर्न म्यूजिक पर आधारित कार्यक्रम सुनिएगा मैचलेस म्यूजिक आर। 11 हिंदी में समाचार। 11:05 पर बॉलीवुड की अपडेट्स और गानों के साथ लेकर आएंगे कार्यक्रम बॉलीवुड ट्रेल्स। 12 हिंदी में समाचार और 12:05 पर वेस्टर्न म्यूजिक पर आधारित कार्यक्रम प्ले इट कूल।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था विशेष रूप से मजबूत बनी हुई है। रिजर्व बैंक ने निवेश के लिए विदेशी निवेशकों को नियमों में छूट दी। कृषि मंत्रालय ने कहा, संतुलित उर्वरक उपयोग और सतत कृषि के लिए 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान में शामिल हुए। भारत ने जम्मू कश्मीर मामले में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग करने के लिए पाकिस्तान की निंदा की। मौसम विभाग ने 9 जून तक केरल के उत्तरी जिलों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया और भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंद नॉर्वे शतरंज खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव असाधारण रूप से मजबूत बनी हुई है। उन्होंने कहा कि देश ने वित्त वर्ष 2025-26 में 7.7% की मजबूत वृद्धि दर्ज की है। श्री मोदी ने दमण में कल लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
3: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है।
2: प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल देते हुए कहा कि विश्व हरित भविष्य की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
3: ये जो वैश्विक संकट चल रहा है ये दिखाता है कि एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भरता कितनी जरूरी है और बीते 12 वर्षों में देश ने जो कैपेसिटी तैयार की है उसका कितना बड़ा महत्व है। 12 वर्ष पहले भारत में सौर ऊर्जा का उत्पादन नाम मात्र का था, आज हम दुनिया के टॉप 5 देशों में से एक हैं।
2: इससे पहले श्री मोदी ने सूरत में 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 250 गीगावाट में गुजरात का योगदान 50 गीगावाट है। भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए प्रावधानों के अंतर्गत सामान्य निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को अब कई तरह की निवेश सीमाओं से छूट दी गई है। एक रिपोर्ट।
4: नई व्यवस्था के तहत जनरल रूप से निवेश करने वाले FPI को अधिक लचीलापन मिलेगा क्योंकि कुछ निवेश संबंधी प्रतिबंध हटाए गए हैं। रिजर्व बैंक ने सरकारी प्रतिभूतियों और राज्य विकास ऋणों में निवेश के लिए लागू जनरल और लॉन्ग टर्म श्रेणियों को मिलाकर एक एकीकृत निवेश सीमा भी निर्धारित की है। वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही के लिए केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश सीमा 4,62,490 करोड़ और दूसरी छमाही के लिए 4,77,006 करोड़ तय की गई है। राज्य विकास ऋणों के लिए ये सीमा पहली छमाही में 1,53,043 करोड़ और दूसरी छमाही में 1,64,242 करोड़ निर्धारित की गई है। अंकिता आप्टे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
2: वित्त वर्ष 2025-26 में भी देश की अर्थव्यवस्था की मजबूत गति बरकरार है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 2024-25 के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक होने की संभावना है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि देश भर में अब तक 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान से जुड़ चुके हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि संतुलित उर्वरक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया ये अभियान अब जन आंदोलन का रूप ले रहा है।
5: मंत्रालय के अनुसार अभियान के अंतर्गत अब तक 17,800 से अधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिनसे लगभग 7,00,000 किसान लाभान्वित हुए हैं। इसके अलावा 3,700 से अधिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 1,50,000 से अधिक प्रतिभोगियों को उर्वरक उपयोग, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन और वैज्ञानिक खेती की जानकारी दी गई है। मंत्रालय ने ये भी बताया कि किसानों को जैविक और वैकल्पिक पोषक तत्वों के उपयोग की जानकारी देने के लिए 8,850 से अधिक व्यावहारिक प्रदर्शन भी आयोजित किए गए हैं। अभियान का उद्देश्य मिट्टी की उर्वरता बनाए रखना, रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करना और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देना है। अक्षित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
2: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ वार्ता करेंगे। बैठक में व्यापार, निवेश, ऊर्जा और लोगों के बीच आपसी संपर्क सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। 3 दिन की भारत यात्रा पर कल श्री खनाल ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि ये यात्रा भारत और नेपाल के विशेष साझेदारी संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने में सहायक होगी।
6: With Nepal, we have an expansive agenda.
7: नेपाल के साथ हमारा एजेंडा बहुत व्यापक है। इसमें विकास के लिए सहयोग से लेकर लोगों के बीच आपसी संबंध और व्यापार तथा निवेश शामिल हैं। इसलिए जब दोनों देशों के विदेश मंत्री मिलेंगे तो इन सभी संबंधों पर चर्चा होगी। हम नेपाल के साथ अपनी इस बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के इच्छुक हैं।
6: Partnership that we have with Nepal.
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
8: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
9: जिंदगी परीक्षा के लिए नहीं है, हमारे जीवन को बनाने के लिए।

0: शिक्षा एक माध्यम है।
1: परीक्षा से जुड़े किसी भी प्रश्न या समस्या के समाधान हेतु NCPCR द्वारा आयोजित लाइव स्ट्रीमिंग सेशन में विशेषज्ञों से सीधे बातचीत करें, जो कि 23 अप्रैल से लगातार चल रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपनी अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे दावे फैलाने के लिए कर रहा है। भारत ने चेतावनी दी है कि पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान के खोखले बयान और झूठे दावे इस मूलभूत वास्तविकता को नहीं बदल सकते।
3: मैं पाकिस्तान को याद दिलाना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य होना एक बड़ी जिम्मेदारी है। ये पक्षपाती और झूठी बातें फैलाने का मंच नहीं है। मैं ये बात साफ साफ कहना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान की खोखली बयानबाजी और झूठे दावों से ये बुनियादी सच्चाई नहीं बदलेगी।
2: विदेश मंत्रालय ने कहा है कि 2026 में अब तक 1076 भारतीय नागरिकों को अमेरिका से भारत वापस भेजा जा चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि 2025 में अमेरिका से 3567 भारतीय नागरिक वापस भेजे गए थे। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच प्रवासन और आवागमन को लेकर बातचीत जारी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत में पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई SU-57 के संयुक्त उत्पादन का प्रस्ताव दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच के दौरान उन्होंने कहा कि रूस SU-57 कार्यक्रम में भारत की भागीदारी का इच्छुक है। श्री पुतिन ने एकीकृत वायु रक्षा प्रणालियों और अन्य रक्षा उपकरणों के क्षेत्र में भी भारत के साथ सहयोग की इच्छा जताई है। भारतीय शांतिदूत मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने प्रतिष्ठित 2025 संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार से सम्मानित किया है। लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में भारतीय बटालियन के साथ सेवारत मेजर बराक को संयुक्त राष्ट्र शांतिदूतों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर सम्मानित किया गया। अमरीका की सेना ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य के पास ईरान के तटीय निगरानी रडार ठिकानों पर हमला किया है। अमरीका ने कहा है कि क्षेत्रीय समुद्री यातायात को निशाना बनाने वाले ईरान के 4 ड्रोन मार गिराए जाने के बाद ये कार्रवाई की गई। इससे अमरीका और ईरान के बीच रुकी हुई शांति वार्ताओं पर और दबाव बढ़ गया है। एक रिपोर्ट।
4: ये हमला ऐसे समय में हुआ है जब अमेरिका और ईरान के बीच कूटनीतिक बातचीत रुकी हुई है। ईरान विदेशों में अपनी अरबों डॉलर की परिसंपत्तियों पर लगे प्रतिबंध को हटाने की मांग कर रहा है। ईरान के अधिकारी किसी भी अंतरिम समझौते की प्रगति को इन प्रतिबंधों से जोड़ रहे हैं। इस बीच लेबनान में हिजबुल्ला ने अमेरिका की मध्यस्थता वाले इसराइल और लेबनान सरकार द्वारा स्वीकार किए युद्ध विराम प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। हिजबुल्ला के अनुसार किसी भी समझौते में दक्षिणी लेबनान से इसराइल की सेना की वापसी की बात शामिल होनी चाहिए। हिजबुल्ला ने ब्यूफोर्ट किले के पास इजराइल की सेना पर हमले किए हैं। इस किले को इजराइल की सेना ने हालिया हमले के बाद अपने अधिकार में ले लिया था। ईरान ने हिजबुल्ला के लिए अपने समर्थन की बात दोहराई है। समाचार कक्ष से विनोद की रिपोर्ट के साथ मैं राजेश कुमार मीणा।
2: केरलम में दक्षिण पश्चिम मानसून के तीव्र होने के साथ ही मौसम विभाग ने राज्य के उत्तरी जिलों में 9 जून तक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मलप्पुरम, कोईकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड जिलों के लिए आज रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि मलप्पुरम, कोईकोड और वायनाड में कल भी रेड अलर्ट रहेगा। अन्य 6 जिलों के लिए आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंद ने ओस्लो में नॉर्वे शतरंज खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। प्रज्ञानानंद ने अंतिम दौर में जर्मनी की विंसेंट क्रीमर को हराया। ये खिताब जीतने वाले वो पहले भारतीय बन गए हैं। नॉर्वे शतरंज में प्रज्ञानानंद ने विश्व के नंबर एक खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराया था। भारत और अफगानिस्तान के बीच आज से शुरू हो रहा क्रिकेट टेस्ट मैच न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा। इससे पहले 2018 में अफगानिस्तान ने भारत के साथ पहला टेस्ट मैच खेला था। सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में आज भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। गोवा के मडगांव में मैच शाम 6:30 बजे से खेला जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों

0: की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: भारत की आर्थिक वृद्धि में बढ़त की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, संकट के बीच भारत की जीडीपी में उछाल, चौथी तिमाही में 7.8% रही। पत्र के अनुसार मजबूत मांग और उत्पादन के कारण रफ्तार तेज रही। नवभारत टाइम्स के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, ये 140 करोड़ भारतीयों की मेहनत और आर्थिक सुधारों का नतीजा है। पत्र के अनुसार विदेशी पूंजी के लिए टैक्स फ्री राहत तैयार, आरबीआई ने बिना सीमा विदेशी निवेश का दायरा बढ़ाया। देशबंधु के अनुसार लोन महंगे नहीं होंगे और ईएमआई भी नहीं बढ़ेगी। दैनिक भास्कर ने ऐतिहासिक शीर्षक से लिखा है, एआई का ग्लोबल हब बनेंगे हम। ऑस्ट्रेलियाई कंपनी देश में 3,00,000 करोड़ रुपए निवेश करेगी, 5 गीगावाट क्षमता का डेटा सेंटर बनाएगी एयर ट्रंक। जनसत्ता ने अध्ययन शीर्षक से लिखा है, अमेरिका के 96 यूनिकॉर्न में भारतीय मूल के उद्यमियों का योगदान, इनमें कृत्रिम मेधा आधारित सर्च इंजन परप्लेक्सिटी भी शामिल। पत्र के अनुसार नव उद्यमों में 59% की स्थापना प्रवासी उद्यमियों ने की। वीर अर्जुन ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से लिखा है, मेरे मोदी अच्छे मित्र हैं, व्यापार समझौता हो जाएगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, व्यापार समझौता का पहला चरण जुलाई तक संभव। दैनिक जागरण लिखता है, भारत संग SU-57 बनाने को रूस तैयार, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने की 5वीं पीढ़ी का अत्याधुनिक लड़ाकू विमान देने की पेशकश। दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड पर पंजाब केसरी की सुर्खी है, लापरवाह अफसरों पर सीधे FIR, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, जिला मजिस्ट्रेट की शक्तियों को और प्रभावी बनाने का ऐतिहासिक फैसला किया गया। जनसत्ता ने अनदेखी की आग शीर्षक से संपादकीय में लिखा है कि कोई हादसा एक मामूली कोताही का नतीजा हो सकता है, लेकिन अगर वो गलती बनी रही तो उन्हें आपराधिक लापरवाही से कम नहीं माना जा सकता।
2: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था विशेष रूप से मजबूत बनी हुई है। रिजर्व बैंक ने सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश के लिए विदेशी निवेशकों को नियमों में छूट दी। कृषि मंत्रालय ने कहा, संतुलित उर्वरक उपयोग और सतत कृषि के लिए 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान में शामिल हुए। भारत ने जम्मू कश्मीर मामले में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग करने के लिए पाकिस्तान की निंदा की। और भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञान आनंद नॉर्वे शतरंज खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Shagun Chopra, the headlines. Prime Minister Narendra Modi asserts Indian economy remains exceptionally strong despite global economic crisis. Reserve Bank of India eases regulatory norms for foreign portfolio investors in government securities to attract investment. More than 9.42 lakh farmers to join Khet Bachao Abhiyan for balanced fertilizer use and sustainable farming. India slams Pakistan for abusing its temporary membership of UN Security Council to peddle false narratives about Jammu and Kashmir. IMD forecasts extremely heavy rainfall in northern districts of Keralam until June 9th. And Indian Grandmaster R. Pragyanan scripts history becomes first Indian to win Norway chess title. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has asserted that the foundation of the Indian economy remains exceptionally strong, with the nation recording a robust 7.7% growth in the fiscal year 2025-26 despite a global economic crisis. Addressing a large gathering after launching a series of developmental projects worth around 2,970 crore rupees in Daman last evening, the Prime Minister noted that India continues to be among the fastest growing economies in the world. He assured the citizens that the country will forge ahead with its reform express while prioritizing massive infrastructure development and welfare schemes for the poor.
4: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है।
3: Earlier, Mr. Modi launched various infrastructure projects.

0: प्रेम रोग।
1: प्रेम रोग,
0: हाँ
1: प्रेम रोग में कौन सा गीत?
0: अमरे ने खिला
1: के। और किसी का नाम लेना है आपको?
0: जी नाम तो लेना है, लेकिन आपको बताऊं बहुत तेज हवा चल रही है ना, तो गाना आपके लिए डेडिकेट रहेगा। और साथ में एक आपके यहाँ आकाशवाणी कोहिमा के टिंजल सर है ना,
1: हाँ
0: जी, उनके लिए डेडिकेट रहेगा। और मैं आपका नाम जानना चाहूंगा।
1: मेरा नाम इतना जी मैं कभी भी नहीं बताता है, मेरा नाम ऐसे ही मिस्ट्री में रखता है। ओके, आप जानना चाहती हैं तो मैं बोल दूंगी, मेरे नाम है हेचो।
0: जी मुझे समझ में नहीं आया,
1: चोंग बोल सकता है।
0: जी जी
1: ओके, गीत कौन सा वाला गीत बोला था?
0: जी वो प्रेम रोग का भावरे ने खिलाया फूल।
1: भावरे ने खिलाया फूल, ओके ठीक है। प्रेम सिंह जी, आपका फोन लाइन भी इतना अच्छा नहीं है, इसीलिए जल्दी से आपको पूछ रहा था कौन सा गीत सुनना है। आपने कॉल किया और आपने जो मांग किया है, लाइन अप किया है, आप सुनिए और एंजॉय कीजिए। और कॉल करने के लिए दिल से शुक्रिया। প্রোগ্রাম শুরুতে দিয়েছে প্রেম রোগ ফিল্ম কে গীত গাইছে লতা মঙ্গেশকর আর সুরেশ ওয়ার্কার লগা আওয়াজে। আর এই গীত শুনবলে মন হয়ে গে আমি খালতে কল করে কিনা পছন্দ করেছে উজ্জেন প্রেম সিং সিসোদিয়া। তো শুনে শুরু হব প্রেম রোগ ফিল্ম কি গীত।

0: हेलो
1: हेलो दीदी, नमस्कार।
0: नमस्ते, बोलिए, आपका शुभ नाम।
1: ग्राम हीरापुर, जिला सीहोर, मध्य प्रदेश से भगवान सिंह परमार बोल रहा हूँ दीदी।
0: ओके, कैसे हैं
1: अच्छे हैं दीदी, ओ आप तो बढ़िया हैं।
0: जी? बहुत बढ़िया।
1: जी, तो फिल्म का नाम है गुड बॉय बैड बॉय और गाने के बोल हैं मेरी आवारगी मेरी दीवानगी को जरा चेनाए सनम।
0: सुनिए भगवान सिंह जी, गुड बॉय और बैड बॉय मेरे पास नहीं है, अगर आपको दूसरे दूसरा गीत सुनना है तो बोल सकता है।
1: जी, तुम सा नहीं देखा फिल्म का नाम है और गाने के बोल हैं वो हमसे खपा है हम उनसे खपा है मगर बात करने को जी चाहता है।
0: ओके, तुम सा नहीं देखा, अगर ये भी नहीं है तो कुछ है आपका मन में?
1: दीदी लहू के दो रंग मिल जाएगा।
0: देखना है तो तुम सा नहीं देखा, ये पुरानी वाला है।
1: इसमें कौन सा गीत है दीदी?
0: आए हैं दूर से
1: जी
0: चुभने
1: जी
0: वाले, देखो कसम से जवानियां ये मस्त, सर पर
1: जी
0: टोपी और तुमसे नहीं देखा ताइतो
1: ये
0: सॉन्ग।
1: सर पर टोपी लाल हाथ में रेशम का रुमाल तेरा क्या
0: ओके
1: कहना ये वाला सुना दीजिए दीदी।
0: ठीक है, किसी को डेडिकेट करना है आपको? ओके,
1: जी हाँ दीदी, करना है ना, हमारे बहुत सारे दोस्त हैं दीदी,
0: नाम ले
1: अभी तो करना
0: लीजिए।
1: है। जी दीदी, भाई कौन मुंडा जी हैं और अमल भस्मचारी, विमल भस्मचारी, अंजलि भस्मचारी हैं और रमेश पात्र हैं, प्रेम सिंह सिसोदिया जी हैं, रमेश प्रजापति, केशव सिंह राजपूत जी है, अविनाश जी हैं, पूनम दीदी हैं और जो तो करेगा सभी को डेडिकेट रहेगा दीदी।
0: ओके ठीक
1: और
0: है
1: भाई
0: भगवान सिंह जी,
1: जी
0: आपने जो फर्स्ट में मांगा है वो मेरे पास में नहीं था, उसके लिए बहुत बहुत खेत है।
1: नहीं नहीं दीदी कोई बात नहीं।
0: फिर भी आपने दूसरा मांग किया है वो बजा रहा हूँ, और आप सुनिए और एन्जॉय कीजिए। और
1: धन्यवाद
0: जी, कॉल करने के लिए धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
0: উনি ঢাকা সাবিলাক প্রোগ্রামত এইবার দুসরা গীত কারণে আমি খালতে কল করি কিনা অনুরোধ করেছে মধ্য প্রদেশ প্র ভগবান সিং, আর তারপর মাং করেছে তুমসা নাহি দেখা ফিল্ম কি গীত গাইছে মোহাম্মদ রাফি আর আশা ভোসলে, আর তারপর তার লাগা কিছুমান সাথী বিলাক লাগা নাম লই কিনা আছে, আর শুনি থাকা সববিলাক কিবি ডেডিকেট করে কিনা আছে, একসাথ মিলি কিনা শুনব আর এনজয় করা হব তুমসা নাহি দেখা ফিল্ম কি গীত।

0: हेलो।
1: हाँ दीदी नमस्कार।
0: नमस्कार, बोलिए। आपका शुभ नाम दुर्गेश जी है क्या?
1: जी दीदी
0: ओके दुर्गेश जी, बोलिए कैसे हैं?
1: दीदी ठीक हूँ, लेकिन थोड़ा नाराज भी हूँ क्योंकि मेरा फोन नहीं लगता और जो लिसनर का लग जाता है वो मतलब कुछ समय बाद नहीं लगाते, डेली लगाते हैं।
0: ऐसे नहीं है दुर्गेश जी, मन दुखी मत हुए हुए क्योंकि यहाँ पे लगातार दूसरों लोग भी लाइन मिलने के लिए लगातार फॉर्म लगाता है, इसीलिए एंगेज हो जाता है। अभी तो लग गया है।
1: हाँ वो तो ठीक है, मैं तो डेली ट्राई करता हूँ। जो लिसनर सर लग जाता है, जैसे आज किसी का लग गया तो वो उसने थोड़ा रुकना चाहिए एक दो दिन, ताकि दूसरे को भी मौका मिले।
0: वो तो आप लोग का बीच में बात करना, मुझे तो पता नहीं है। यहाँ पे तो जो फोन आएगा हम तो उठाएगा ही। और
1: नहीं, मैं जो भी दूसरे जो लिसनर्स हैं ना उनसे मैं बोलना चाहता हूँ।
0: ओके।
1: मैं तो 2017 से सुन रहा हूँ, मैं बहुत पुराना श्रोता हूँ।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: SMS भी भेजता हूँ, ऐसे में हमारा फोन नहीं लगेगा तो मन तो दुखी होगा ना।
0: अभी तो लग गया है, खुश हो जाओ और बोले कौन सा गीत सुनना है।
1: आज फिल्म विश्वात्मा का गाना सुन, त्रिदेव का,
0: त्रिदेव
1: विश्वात्मा का है शायद वो।
0: विश्वात्मा,
1: दिल ले गई तेरी बिंदिया।
0: विश्वात्मा
1: जी।
0: ओके विश्वात्मा, मैं साइट हो सकता है
1: जी, देखिए।

0: अगर नहीं है तो
1: दीदी देख के बताओ ना।
0: विश्वात्मा। सिर्फ एक ही गीत है, वो है सात समंदर पार।
1: और त्रिदेव
0: त्रिदेव हो सकता है, त्रिदेव बहुत दिन नहीं बजाया है, बट है। कौन सा वाला सुनना है?
1: कौन कौन से गाने हैं
0: गजर ने किया है इशारा, गली गली
1: जी?
0: में है, मैं
1: जी
0: तेरी मोहब्बत में, रात भर जाम से, और तिरची टोपी वाले, तिरची
1: गदर ने
0: टोपी
1: किया
0: वाले।
1: है इशारा, गदर ने किया है इशारा।
0: ओके ठीक है। किसी को डेडिकेट करना है?
1: दीदी ये मेरे फैमिली के लिए, बाबा राधेश्याम नारायणपुरे, वंदना भावना बिंदु गोलू कुसुम भाई, सूरज वर्मा, ऋषभ कनक और भावना वर्मा, प्रेमलाल वर्मा, निखिल धर्मेंद्र और ममता भाई वर्मा, सपत रंगी रेडियो लिसनर्स ग्रुप, सूर रेडियो लिसनर्स ग्रुप, जय माता दी रेडियो लिसनर्स ग्रुप, निमाड़ी भाई निमाड़ी गर्ल, और मेरा दोस्त है भाईकोन मुंडा, रमेश पत्रो, सुबह के जमीर, धनंजय, और आप सभी आरजे के लिए।
0: ओके ठीक है। दुर्गेश जी, आप तो मन दुखी मत हुए, आपका
1: जी
0: फोन भी लग गया है और आपका गीत भी मैं बजाने वाला है। सुनिए और एन्जॉय कीजिए और आपका मन शांति कर दीजिए, ठीक है? ओके थैंक यू दुर्गेश जी।
1: जी थैंक यू।
0: होनी रगा सब बिला होनी बो त्रिदेव फिल्म की गीत गाय साल का याग्निक सरना सरगम और सपना मुखर्जी लगा वास्ते और इट गीत तो होनी बोले मनो ये ना पसंद करी से मध्य प्रदेश पर दुर्गेश नागनपुरी और तार पर तार लगा फैमिली बिलाक और FM ट्रैकपन लाइक किसुमन साथी बिलाक और सब आरजेस खन के डेडिकेट करी दी गिना से तो होनी बो और एंजॉय करा हो त्रिदेव फिल्म की गीत।

के लगावां स्टेप अप विश्वास फ्लिमट हुनिले खुनि थका सबैलाई प्रोग्राम बी सेस्क्रुबुलेला समय टिपुञ्जी जैसे अपनार खान सबके

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव असाधारण रूप से मजबूत बनी हुई है। श्री मोदी ने दमण में कल लगभग 2,970 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक जनसभा

0: में कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
1: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है।
0: प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल देते हुए कहा कि विश्व हरित भविष्य की ओर अग्रसर हो रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऐसे समय में जब कई देश आर्थिक अनिश्चितताओं का सामना कर रहे हैं, भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्था बनी हुई है। वित्त वर्ष 2025-26 में दर्ज 7.7% की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर का जिक्र करते हुए श्री सिंह ने कहा कि यह उपलब्धि पिछले 12 वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था की दृढ़ता और मजबूती का संकेत है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने आर्थिक विकास को स्थिरता, आत्मविश्वास, निरंतरता और विश्वसनीयता के साथ जोड़ा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ वार्ता करेंगे। बैठक में व्यापार, निवेश, ऊर्जा और लोगों के बीच आपसी संपर्क सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। श्री खनाल ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। वे 3 दिन की भारत यात्रा पर हैं। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज स्लोवेनिया के नवनियुक्त विदेश मंत्री टॉन काजर को बधाई दी और उनके साथ मिलकर काम करने की इच्छा व्यक्त की। पूर्व राजनयिक टॉन काजर ने स्लोवेनिया में प्रधानमंत्री जिनेश जानशा के नेतृत्व वाली नवगठित दक्षिणपंथी गठबंधन सरकार में आधिकारिक तौर पर शपथ ली। दिल्ली पुलिस ने मालवीय नगर होटल अग्निकांड मामले में रसोइये को गिरफ्तार किया है। इस होटल में 3 जून को आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई थी और 40 अन्य घायल हो गए। इससे पहले पुलिस ने होटल मालिक को भी गैर इरादतन हत्या और अन्य संबंधित धाराओं के अंतर्गत गिरफ्तार किया था। जांच जारी है। पंजाब में आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका सड़क पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत हो गई और 22 अन्य घायल हो गए। सभी पीड़ित एक ही परिवार के सदस्य थे और ब्यास नदी में अपने रिश्तेदार की अस्थियों को विसर्जित करने जा रहे थे। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी दुर्घटना स्थल पर पहुंचे और स्थानीय लोगों की मदद से बचाव अभियान चलाया गया। भारत लैटिन अमेरिका और कैरेबियन व्यापार तथा निवेश मंच का आयोजन आज मध्य प्रदेश के इंदौर में किया जा रहा है। इसमें 15 लैटिन अमेरिकी और कैरेबियन देशों के राजदूत और राजनयिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। उद्योग जगत के अग्रणी और बड़े निवेशक भी आयोजन का हिस्सा होंगे। इसका मुख्य उद्देश्य भारत और इन देशों के बीच व्यापार तथा निवेश के नए अवसर खोजना है। भारत अमेरिका सेना के अधिकारियों की वार्ता को 29वां चरण हवाई में आयोजित किया गया। इसकी सह अध्यक्षता सेना प्रमुख रणनीतिक लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई और अमेरिकी सेना के उप कमान जनरल लेफ्टिनेंट जनरल जोएल वोवेल ने की। अमेरिका के सिएटल में मैंगो मैजिक फेस्टिवल में आज भारतीय आम के प्रचार और स्वाद परीक्षण के दूसरे चरण का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में 100 से अधिक प्रमुख भारतीय फल आयातकों ने हिस्सा लिया। इसमें महाराष्ट्र के अल्फांसो और केसर, आंध्र प्रदेश के बंगनपल्ली और हिमायत, उत्तर प्रदेश के लंगड़ा दशहरी और गुजरात के पके राजपुरी आम शामिल हैं। अमरीका की सीनेटर मंका ढींगरा ने कहा कि खाद्य पदार्थों की का आदान प्रदान देशों के बीच केवल पोषण की जरूरतें ही पूरा नहीं करता कि ये मजबूत व्यापारिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों की नींव भी रखता है। भारतीय वाणिज्य दूतावास ने पिछले वर्ष जुलाई में सिएटल में भारतीय आम की शुरुआत की थी। भारत आज पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में मेजबान जापान से खेलेगा। ये मुकाबला जापान के काकामिगाहारा में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी।
1: हेलो एंड नमस्ते इंडिया। जैसे गानों का है आवाज से रिश्ता, जैसे गानों का है आवाज से रिश्ता, सुरों का है सांस से रिश्ता। जो गाने रहते हैं आपकी जुबान पर, नक्श छोड़ जाते हैं आपके दिलो जहाँ पर, वही गानों के बारे में पूछेंगे आपसे और बहुत सी बातें भी करेंगे आपसे, क्योंकि आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मेरे वाला सॉन्ग आकाशवाणी रेनबो पर 9868107070। ये वो व्हाट्सएप नंबर है जहाँ भेज सकते हैं वो गाने जो आप इस प्रोग्राम में सुनना चाहते हैं, जो वजह बेवजह है आपके दिल के करीब, अगर वजह बताएंगे तो चंगा लगेगा। जी हाँ, वो गाने जो आपकी रिंगटोन है, आपके फोन की रिंगटोन है, या जिसे आप सुनना बस हमेशा गुनगुनाए रहते हैं या जहन में जिंदा है आपके, उन गानों को भेजिए ना जो सुनना चाहते हैं इस प्रोग्राम में। आज मान्य प्रियंका प्ले करना है ना, तो 9868107070। मैं हूँ प्रियंका वर्मा आपके साथ। गुड आफ्टरनून।

व्हाट अ मास्टरपीस गाइस, सीरियसली ये जो ट्रैक है, ये रोमांटिक ट्रैक धीरे धीरे कैसे स्पिरिचुअल ट्रांस में ले जाता है ना हमें. ओ माय माय, आकाशवाणी रेनबो पर मेरा वाला सॉन्ग सुन रही हैं आप, जहाँ भेज सकते हैं वो गाने जो वजह बेवजह हैं आपके दिल के करीब. दोस्तों प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, प्रोग्राम का प्रोटोकॉल है, मुझे कुछ मत कहिएगा कि 2000 ईयर के बाद के गाने भेजिएगा. जो गाने थोड़े बहुत पुराने हो सकते हैं, लाइक यू नो 90s में थोड़ा हो सकता है, लेकिन बहुत पुराने मत भेजिएगा. क्या करें, यही प्रोग्राम का प्रोटोकॉल है जो हमें फॉलो करना होता है. राधे राधे, इंजॉइंग द मेरे वाला सॉन्ग, प्ले द मेरे वाला सॉन्ग. युवा मैं सोनिया, कभी खुशी कभी गम. तेज कुमार गुप्ता, जनता विहार, मुकुंदपुर, दिल्ली से हमें लिखते हैं. ओके, ये वाला जो गाना है ना, युवा मैं सोनिया, ओ माय, क्या इसमें बिग अमिताभ बच्चन की डांसिंग, यू नो उनके जो बीट से, जो वो जिस तरह से वो डांस कर रहे थे, फुट टैपिंग नंबर है ये. और कभी खुशी कभी गम का ये जो ट्रैक है ना, ये अर्ली 2000 बॉलीवुड पॉप कल्चर का एक आइकॉनिक डांस नंबर है. जतिन ललित का जो म्यूजिक है, उन्हें इस तरह से इस म्यूजिक को, इस गाने को कंपोज किया कि 2 decades बाद भी इसकी एनर्जी और ग्रूव में फ्रेश महसूस होती है. सीरियसली ये जो कैची रिदम है ना, ये वाला ट्रैक मैंने बिल्कुल जो है ये मैंने क्यों कर दिया है. मेरे दोस्त आकाशवाणी रेनबो के साथ जुड़े रहिए, अभी हमारे सिस्टम को हमसे लगता है कुछ ना कुछ हो गया है. दोस्त हमारे स्टेशन के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि आपके मैसेजेस अभी आ रहे थे और अब एकदम से पता नहीं क्या हुआ है, बट कोई बात नहीं, अभी ठीक चल रहा है, अभी चल रहा है, हमारे साथ ही रहिएगा. और दोस्तों ये जो गाने होते हैं ना, ये कहते हैं कि जो संगीत होता है उसको सुनने का एक सही समय होता है. जी हाँ, हर राग को सुनने का एक सही समय होता है. और म्यूजिक थेरेपी के बारे में तो आप जानते ही हैं. तो चलिए चलिए, हमारा सिस्टम लगता है वो इस समय जो है वो ठीक हो गया है मेरे ख्याल से. और चलिए अभी हमारे पास जो मैसेजेस आ रहे हैं हम उनको देख लेते हैं. ये है, नमस्कार जी. ओके, साजन फिल्म का कोई भी सॉन्ग चला दीजिए. सलीम अख्तर, रेशमा बेगम अलीगढ़ से हमें लिखते हैं. अमन विलियम लिखते हैं, दिल कह रहा है तुझसे रिश्ता. दोस्त लक्ष्मीनगर से आपने मैसेज किया है, कौन सी फिल्म का गाना है ये बता दीजिए. सत श्री अकाल प्रियंका वर्मा जी, तुसी कैसे हो जी, हम तो चंगे, तुसी दसो. टिप टिप बस है पानी होगा, आपने 2-3-4 की फेवरेट ट्रैक है आपके और मेरे फोन के. ओके, आपने लिखा है प्रदीप सलूजा, अनीता सलूजा, संगीता सलूजा, जनकपुर न्यू दिल्ली से हमें लिखते हैं. कोशिश की जाएगी दोस्त, मैं अभी इन सब गानों को सर्च करूंगी. और इसी के साथ हमें रोहित पुणे से लिखते हैं, प्लीज प्ले द ब्यूटीफुल टाइटल ट्रैक ऑफ दिल का रिश्ता, बड़ा ही प्यारा है. कितना प्यारा गाना है ना. प्रियंका को नमस्कार, आज बहुत दिनों बाद इस प्रोग्राम में सुना, खुश हो गए. ओके, आपने भी 2-3-4 चॉइसेस दिए, ये बड़ा अच्छा लगता है जब आप हमें 3-4 चॉइसेस देते हैं. भगवती जी न्यू दिल्ली से लिखते हैं, जी हाँ, बीच में वाशियाना और लेट्स डिटॉक्स कर रहे थे. और इसी के साथ ये में मैसेज आया है नीतीश कुमार का, रेशम नगर झारखंड से, मोहब्बत को दुनिया सलाम करती है, प्लीज प्ले दिस सॉन्ग. अच्छा, मोहब्बत को दुनिया सलाम करती है, क्या बात है. कौन सी फिल्म का गाना है दोस्त, और ये क्योंकि मूवी का सॉन्ग है. ओके, दिल का रिश्ता. ओके, ये हमें मैसेज किया है. और साथ में हमें ये मैसेज भी आया है, वेरी गुड आफ्टरनून प्रियंका, खोया खोया का इंतजार कर रहा था, कब आओगे और मुझे बताओगे, आज बहुत दिनों बाद आए शो में. डॉली में लिखते हैं, जी जी बिल्कुल. चलिए, और इसी के साथ जो था ना हमारा जो ट्रैक था, युवा मैं सोनिया, आई होप ये जो गाना है ये प्ले हो पाए. क्यों नहीं होगा, आखिर आकाशवाणी रेनबो पे चल रहा है ये प्रोग्राम. तो चलिए फिलहाल इस गाने को सुनते हैं.

शुभ दोपहर प्रियंका जी, अमरदीप कुमार जलकंडा पुरम सेलम तमिलनाडु से, तेरे नाम फिल्म का तुमसे मिलना बातें करना बड़ा अच्छा लगता है, ये गाना सुनवा दीजिए। तो जी सुनिए भाई, तमिलनाडु से मैसेज आया, दिल्ली से ये गाना प्ले हो रहा है सिर्फ आपके लिए और हमारे और दोस्तों के लिए जो हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो को सुन रहे हैं। दिल्ली NCR में 102.6 मेगाहर्ट्ज़ इसकी फ्रिक्वेंसी, बाकी अलग अलग शहरों में अलग अलग फ्रिक्वेंसी पे आप हमें सुन रहे हैं।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

हाँ, वेलकम बैक। आ गई हूँ मैं प्रियंका, फिर से आपसे बातें करने के लिए। 9868107070 पर भेज दीजिए वो गाने जो बजा बेवजह हैं आपके दिल के करीब। अब जैसे मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़ हमें लिखते हैं, इन्होंने 3-4 फिल्म्स की हमें रिक्वेस्ट की है कि तेरे नाम को तो देखिए मैंने एक भी गाना सुनवा दिया। देखिए हमें तमिलनाडु से रिक्वेस्ट आई थी और आप मेरठ कैंट से बात कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, तो देखिए आपकी चॉइस भी आई एम श्योर उनसे मिल गई। वैसे मैंने दिग्दर्शन जी और कविता जी, मैंने जो है वीर फिल्म का गाना है सलाम आया जी, हम बहुत प्यारा गाना है। रूप कुमार राठौड़ की आवाज और श्रेया घोषाल की मीठी सी आवाज को आप सुनेंगे इस गाने में। मैंने ये गाना बिल्कुल क्यों कर दिया। इसी के साथ दोस्तों, जैसे कि गर्मी बहुत है, आप भी ये बात जानते हैं, मैं भी ये बात जानती हूँ, गर्मी ऑफ कोर्स गर्मी में गर्मी लगेगी, ठंडोई लगेगी तो गर्मी में हम प्यास लगती, डिहाइड्रेट नहीं होना हमें, अपने प्यास अपनी जो है उसको पानी पीते रहना है हर एक घंटे में। आप जितना पी सकते हैं पानी आप पीजिए, एक ग्लास पीजिए। ऐसे चिड़ियों को भी पानी की जरूरत होती है। और मैंने इस पर कुछ लिखा, प्रियंका आपसे शेयर ना करे ऐसा तो हो ही नहीं सकता है ना, तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी कि जो मैंने लिखा है दोस्त। मैंने लिखा है कि आसमान के कैनवस पर किरदार निभाते हुए पंछी, आसमान के कैनवस पर किरदार निभाते हुए पंछी, खामोशियों को तरुण की जुबान सिखाते हुए पंछी, फिर एक बार हो मेरे आंगन में बसेरा तुम्हारा, चहचहाती होंगी शामें हमारी और गुनगुनाता होगा सवेरा तुम्हारा, फिर से रौनक लगेंगे मुंडेरों पर, बालकनी बगीचों और पेड़ों पर, ये चाहती हूँ कि फिजाओं में गूंजती रहें सदाएं तुम्हारी, कुदरत को भी भली लगती होंगी अदाएं तुम्हारी। जी हाँ, बताइएगा कैसी लगी। और देखिए म्यूजिक ही तो होता है हमारे साथ, पक्षियों की चहचहाट होती है, पेड़ों की सरसराहट होती है, सब म्यूजिक है। कहते हैं ना खामोशी में भी संगीत सुनाई देता है, हमारे दिल की धड़कन में भी संगीत होता है, तो संगीत तो हमारे कहते ना कि रग रग में है। तो बस इसी बात पे 9868107070 और इसी के साथ मेरठ से जो कविता जी और दिग्दर्शन का मैसेज आया था, तो चलिए इस गाने को सुनते हैं।

इतना मीठा सा गाना है ना। जी हाँ, कहते हैं ना कि साउंड एयर में वेव्स की फॉर्म में ट्रैवल करती है, और ये एयर पार्टिकल्स की वाइब्रेशन की वजह से साउंड हमारे कानों तक पहुंचता है और म्यूजिक सुनाई देता है। तो क्यों ना पॉजिटिव वाइब्रेशंस को अपने कानों तक लाइए, अच्छे अच्छे गाने सुने, रिलैक्स रहे और चिल करें बेसिकली। जी हाँ, किसको खुशी नहीं चाहिए, किसको सुकून नहीं चाहिए। ये मैं मैसेज आया धर्म भाटिया जी का और उन्होंने ढूंढ निकाला है। थैंक यू सो मच धर्म भाटिया जी। और आपने जो गाना, वो 1975 की फिल्म का आपने गाना जो कहा है वो वाला नहीं प्ले कर सकती। प्रोग्राम का प्रोटोकॉल है 2000 ईयर। कभी कुछ खास स्पेशल होता है ना तो हम प्ले कर देते हैं, या थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन आपने हमें ढूंढ निकाला, ये हमें जान के अच्छा लगा। और इसी के साथ हमें मैसेज आया है, आदाब, किसी भी गीत में शामिल कर लीजिए कस्बा गन्नौर यूपी से फारूक अली खान, फैजी फराज, फरीन फारा, फरहान फायरा, तायरा, मोहम्मद सईद अबासी, निगत पवीन अबासी, शाहनवाज अबासी, सरफराज अबासी, फदीन अबासी, सुहान अबासी, अजान अबासी, अबान अबासी, पूरा अबासी परिवार। इसी के साथ सुनीता शर्मा शर्मा बाग से लिखते हैं कि एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम, एक दूसरे के वास्ते बेसरी हूँ। वो क्या होता है ना, कुछ गाने आपने सुने होते हैं और वो गाने ना आपके आपने याद नहीं किए होते, पर आपके जहन में पता नहीं कैसे वो फीड हो जाते हैं कि आपके जैसे आपने एक लाइन लिखी हो, मैं बस ऐसी बस मैं तो पता है ऐसी गुनगुनाती हूँ, मुझे छोड़ो। चलो हम मैसेज पढ़ते हैं। ट्रैफिक अपडेट है, प्रीतमपुरा से मधुबन चौक पर इस समय ट्रैफिक कम है। ओके थैंक यू जी। अनिता वर्मा प्रीतमपुरा दिल्ली से हमें लिखती हैं। और इसी के साथ राम राम जी रोहित खेरा दिल्ली 9 से लिखती है, बहुत अच्छा लिखते हैं दोस्तों। प्रियंका जी, जितना हो सके श्रोता का ध्यान रखा कीजिए, आते रहा कीजिए, अपने सुंदर और सकारात्मक विचार को हमारे लिए प्रस्तुत करता कीजिए। आपकी हंसी और आपका आना हमारे लिए दिन बनाना, आपके और आपके विचार हमें यूं ही पावन बनाते रहें। जय हिंद, जय हो शंकरा, दिल दिया है जहाँ भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मीनिंगफुल ये मैसेज है। थैंक यू सो मच कि आपको अच्छा लगा कि हम जो शेयर करते हैं वो आपको पसंद आता है। थैंक यू सो मच रोहित जी, माई फेवरेट सॉन्ग कह दो ना यू आर मसोनिया। ओके, कभी खुशी कभी गम से, पर कभी

रोज, मुझे बहुत अच्छा लगा कि गैंगटॉक से हमें मैसेज आया है। इसी के साथ प्रियंका मैडम जी, मेरा भी सॉन्ग प्ले कर दीजिए। अच्छा, कौन सा गाना है आपका? आपका गाना है ओके जीने के हेचा, समझ में नहीं आया दोस्त, ये कौन सी फिल्म का गाना है मुझे जरूर लिख के भेजिएगा। और नमस्कार जी, मनोज कुमार यूपी हरदोई सवाज पुर, मैसेज को शामिल कर लेना। सात लोग मिलकर गाने सुन रहे हैं जिनके नाम है रामू राठौर, श्याम राठौर, सुमित राठौर, मनमोहन राठौर, दुर्गेश राठौर, अर्जुन राठौर। सबकी फरमाइश है नदिया के पार कौन दिशा में लेके चले, बड़ा प्यारा गाना है ये तो, बहुत पुराना गाना ना मेरे ख्याल से। फिलहाल तभी हम सुनते हैं इंतजार फ्रॉम द फिल्म पाप, अनुराधा पौडवाल की आवाज़।

इसी के साथ हमें, मेरा नाम मनोज राठी, मैं मेरठ से हूँ, एक गाना हमारे पसंद का भी चलाएं आपकी दोस्त पूजा के लिए, अपनी दोस्त पूजा के लिए, फिल्म राजा हिंदुस्तानी से कितना प्यारा तुम्हें रब ने बनाया, प्लीज प्ले कर दीजिए हमारी पसंद का ये गाना। गुड आफ्टरनून, फिर ले आया दिल, बर्फी, अजीत सिंह, वाओ व्हाट अ ट्रैक, राजीव रावत जिक्रपुर पंजाब से लिखते हैं। हेलो मैम, नाइस प्रोग्राम, अपनी पसंद का कोई भी खूबसूरत सा सॉन्ग सुनवा दीजिए। पूजा कोमल हमें हरिनगर न्यू दिल्ली से लिखते हैं, अरे आप लोगों की पसंद वो हमारी पसंद। मोहम्मद मिशद अली फ्रॉम बिहार, प्लीज प्ले द सॉन्ग मस्त मगन फ्रॉम टू स्टेट्स।

0: तो है पर स्टेज कहाँ है?
1: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
0: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
1: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
0: और विनर्स को क्या मिलेगा?
1: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकेंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
2: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही
3: www.dellytalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
4: दादी दादी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त,
5: पता का चाय गजब का स्वाद।
6: कपूर पंजाब से मैसेज आया है राजीव रावत जी को, इन्होंने रिक्वेस्ट किया फिर ले आया दिल फ्रॉम द फिल्म बर्फी, अरिजीत सिंह की वॉइस में, इन्हें सुनना है तो लीजिए सुनिए।

Arijit Singh. He's an emotion, guys. और जिस तरह से पिक्चराइज किया गया गाना, कमाल है, कमाल। वैसे दोस्तों एक बात तो है कि गाना सुनना सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं होता, बल्कि इमोशनल और मेंटल इसकी ज़रूरत होती है। म्यूज़िक एक ऐसी लैंग्वेज है जो बिना बोले तक दिल तक पहुंच जाती है। जब हम थक जाते हैं, टूट जाते हैं या बस चुप हो जाते हैं, तो गाना हमारे लिए बोलता है। क्यों, मानते हैं ना? जी हाँ, जब म्यूज़िक सुनते हैं ना तो ऑडिटरी कॉर्टेक्स साउंड वेव्स को डिकोड करता है और साथ ही लिम्बिक सिस्टम इमोशंस को प्रोसेस करने लगता है। यानी जब हम म्यूज़िक सुनते हैं तो दिमाग का ऑडिटरी कॉर्टेक्स पहले साउंड वेव्स को पहचानता है और समझता है, जैसे सुर, बीट और पिच। साथ ही दिमाग का लिम्बिक सिस्टम एक्टिव हो जाता है जो इमोशंस को कंट्रोल करता है। इसी वजह से म्यूजिक सिर्फ सुनाई नहीं देता बल्कि महसूस भी होता है। कभी खुशी, कभी सुकून, कभी यादें। इस कोऑर्डिनेशन की वजह से म्यूजिक सीधा दिल तक महसूस हम कर पाते हैं उसे। जी हाँ, और देखिए हर चीज का एक साइंटिफिक रीजन जरूर होता है। डियर प्रियंका जी, आपकी स्पैरोस पे लिखी लाइंस मन को छू गई, बट मेरे आंगन में तो इतने प्लांट्स हैं कि क्या कहूँ। मॉर्निंग में स्पैरोस की चहचहाट से ही जगती हूँ मैं तो। दो कप्स में भी मनी प्लांट लगा रखे हैं। डेली कप्स को पानी से भर देती हूँ, डेली देखती हूँ कैसे अपनी चोच में पानी लेकर चोच साफ करती हैं, फिर उड़ जाती हैं और फिर बहुत पक्षी आते हैं। एक बार आप रोहतक आकर देखो, क्या मजा आएगा। सुबह सुबह फ्रेश एयर मीन सांस लो, मिसेज रंभाड़िया। ओके, थैंक यू, थैंक यू सो मच। और आपने जो कहा है ना कि ये वाला ट्रैक है, मैं प्ले नहीं कर सकती, एक पुराना, और आपने जो रीज़न दिया है ना वो बिल्कुल नहीं। ये क्या करें, क्या करें धर्म भाटिया जी, आप तो समझती हैं कि प्रोग्राम का एक प्रोटोकॉल होता है, वो फॉलो करना पड़ता है। और इसी के साथ मैं सबके मैसेजेस ले लेती हूँ। नमस्ते जी, आपको सिरसा हरियाणा से सुन रहा हूँ। रविंद्र लखेरा सिरसा हरियाणा से, ओके। और आपने भी रिक्वेस्ट की, एक रिक्वेस्ट की है। और इसी के साथ सॉन्ग खुशियाँ और गम बहाती है जिंदगी क्या कहती है, ओके। अलीपुर दिल्ली से मैसेज है मोनू पराशर का। और इसी के साथ ओके, बहुत सारे मैसेज डिलीट कर लिए और किन्होंने डिलीट करे हैं ये मैं देख रही हूँ। बापरे, न्यू दिल्ली उत्तम नगर से जयराम खोरवाल, सचिन खोरवाल, दीपांशु खोरवाल, ये मैसेज फिर चले गए। ओके, आपके मैसेज, आपने लगता है बहुत सारे मैसेज कर दिए हैं, इतने मैसेज कि मैं काउंट भी नहीं कर पा रही हूँ। हम प्रोग्राम का सुबह से इंतजार करते हैं, फिर मैसेज करते हैं, उसके बाद शामिल नहीं करते। अभी टाइम बीत गया है क्या? जयराम खोरवाल जी, सचिन खोरवाल जी, अमन खोरवाल जी, दीपांशु खोरवाल जी, थोड़ा सब्र रखिए, एक से दो का टाइम होता है, थोड़ा हमें भी देखिए, हम कर रहे हैं, मैसेज पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा प्रोटोकॉल होता है, फॉलो करना होता है। और ये मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप भी उसे फॉलो करेंगे। आपने तो इतने मैसेज कर दिए कि मैं काउंट ही करती रह गई। और इसी के साथ ओके, सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी हमें लिखते हैं, ओके, प्रियंका जी सादर प्रणाम, ओके, आपने हमें दो दो एक चॉइस दी है, चुरा के दिल, ये कौन सी फिल्म का गाना है, ओके। और अपनी पसंद का गीत सुनाने के लिए 135 पर मैसेज भेजा हूँ, लेकिन अभी तक हमारी पसंद का गीत नहीं सुनवाया, ओके। कौन सी फिल्म का, आपने MKTA लिख दिए, पर ये कौन सी फिल्म है दोस्त, ये तो आपने बताया ही नहीं। और मैंने कहा 2000 ईयर के बाद के गाने, ये थोड़े आगे पीछे हो सकते हैं या फिर कोई स्पेशल रीजन हो, वो हम इसलिए प्ले कर सकते हैं। मैं शैलेंद्र वर्मा दिल्ली से, कृपा करके गाना सुनवा दीजिए, तेरी मिट्टी में मिल जाऊं, ओके। और इसी के साथ देवेंद्र इंती हमें असम से लिखते हैं, नमस्ते लंदन का, ओके। प्रियंका मैडम जी, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। और मैडम आपने मैसेज नहीं पढ़ा, ओके, मैंने मैसेज पढ़ा है दोस्त, चलो हम दोबारा पढ़ लेते हैं। सत श्री अकाल जी, फिल्म अगर तुम ना होते का सॉन्ग सुनवा दीजिए, हमें और जीने की चाहत ना होती अगर तुम ना होते, किशोर कुमार की आवाज़ में, ओके। ये है हरिकिरण सिंह, फरुखाबाद, उत्तर प्रदेश से, क्या गाना है, हमें और जीने की चाहत ना होती अगर तुम ना होते, ओके। आज मैडम जी मेरा मैसेज शामिल नहीं किया, वेरी नाइस प्रेजेंटेशन मैडम जी, वेरी नाइस सॉन्ग लिस्ट, ये तो आप लोगों की लिस्ट है दोस्त। और ये हमें मैसेज आया पंकज अमरावती महाराष्ट्र से, ओके, थैंक यू सो मच दोस्त। और इसी के साथ हमें मैसेज है हीरो हिंदुस्तानी का सॉन्ग दीवाना, तेरा शालू, ओके, तेरा दीवाना शालू, हमें शादीपुर से लिखती हैं, नमस्ते प्रियंका जी, मैं FM रेनबो दिल्ली का आपका एक नियमित तो बहुत बड़ा श्रोता हूँ, आपकी जादुई आवाज और बात करने का जो अपनापन भरा अंदाज है वो सीधे दिल को लेता है। आजकल की इस भागदौड़ जिंदगी में मैं आपका शो ट्यून इन करता हूं तो सारा तनाव दूर हो जाता है। गानों का आपका सिलेक्शन हमेशा लाजवाब होता है, यूं ही अपनी आवाज से हमारे आशियाना में सुरों के रंग बिखेरते रहिए। थैंक यू सो मच इतने प्यारे मैसेज के लिए। और ये मैसेज आया है हमें पुष्पेंद्र गर्ग, गांव नन्नी टहरी, जिला टीकमगढ़, मध्य प्रदेश से, आपने दिल खुश कर दिया, पल पल दिल के पास तुम रहती हो, ओके। थोड़ा पुराना गाना है, आप प्रोग्राम का प्रोटोकॉल आप जानते ही हैं, और मैं इससे ज्यादा क्या कर सकती
सकती हो। इसी के साथ हमें मैसेज आया है, ताल फिल्म के गाने की रिक्वेस्ट की है, ये हमें रिक्वेस्ट की है, ताल मूवी का कोई भी गीत चला दीजिए मैम। अजीत कुमार समस्तीपुर बिहार से, बहुत दिनों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ पर मेरी रिक्वेस्ट पूरी नहीं होती, सबकी रिक्वेस्ट हो जाती है। अरे ऐसी कोई बात नहीं, सारे प्रेजेंटर्स कोशिश करते कि सबकी कोई निराश नहीं जाए। तो इसी के साथ मैं गाना जो लगाऊंगी वो लगाऊंगी कि इश्क बिना क्या जीना यार। जी हाँ, इश्क बिना, मोहब्बत के बिना, प्यार के बिना कोई जिंदगी होती है नहीं होती ना। तो बस प्यार को कहते ना कि प्यार है तो हम सब है। इसी के साथ देखिए मैसेज आया है, हेलो मैम गुड आफ्टरनून, आसिफ सैफी फ्रॉम मेरठ। ओके दोस्त, अभी मैं मैसेज शायद सब सबके शामिल ना कर पाऊँ। निरंकारी कॉलोनी से संजीव जी का भी मैसेज आया है, मौजा ही मौजा। ओके फैमिली मेम्बर्स, जीविका, मुस्कान, सपना, आरती। इसी के साथ बस गायस मैं कहूँगी गानों को अपनी जिंदगी में शामिल कीजिए, गानों से अपनी दोस्ती बनाए रखिए और अपनी चॉइस में बताते रहिए 9868107070 पर। इसी के साथ प्रियंका वर्मा को दीजिए इजाजत, टेक केयर, बाय बाय। अब सुनते हैं इश्क बिना क्या जीना यारो, इश्क बिना क्या मरना यारो, गुड़ से मीठा इश्क इश्क, इमली से खट्टा इश्क इश्क।

जी हाँ, आपकी वाणी आकाशवाणी और आकाशवाणी एफएम रेनबो पर इस वक्त आपके साथ जुड़ चुकी हूँ मैं दीपिका, लेकर हाजिर हूँ प्रोग्राम आशियाना। सैटरडे का दिन है और सैटरडे यूं भी जरा सा सुस्त दिन होता है, क्योंकि देखिए पूरे 5 दिन जब हम काम करते हैं तो सैटरडे संडे का इंतजार बहुत रहता है, और फिर जब शनिवार आता है, रविवार आता है, तो शनिवार हम जरा सा सुस्त मानकर चलते हैं।

क्योंकि हम बहुत सारे काम होते हैं जिन्हें टाल रहे होते हैं, या फिर आज फुल रेस्ट मूड में होते हैं, और फिर जब रविवार आ जाता है तो लगता है अरे अभी तो वीकेंड आया था और अभी खत्म हो गया। जिंदगी में अक्सर ऐसा होता है क्योंकि जिंदगी बहुत भागती दौड़ती है और हम उसके साथ इतना भागते दौड़ते हैं, इतना उलझ जाते हैं कि लगता ही नहीं है कि जिंदगी जी रहे हैं, और कभी कभी समझ ही नहीं आता कि वक्त कहाँ चला गया। अब ये जो मैं कह रही हूँ इसी के बारे में कुछ बातें करूंगी। क्या कुछ बात करने वाली हूँ, क्या बातें आगे बढ़ेंगी बातों से, बिल्कुल बताऊंगी आपको। लेकिन पहले इस खूबसूरत से गाने के साथ करते हैं प्रोग्राम की शुरुआत। आप थाम लीजिए मेरा हाथ और निकल पड़िए मेरे साथ इस सफर पर।

हाँ जी, जिक्र मैंने किया कि कैसे जो ये भागती दौड़ती जिंदगी होती है जिसके साथ हम भागते दौड़ते रहते हैं, बहुत कुछ हासिल करने की कोशिश में, कभी किसी मुश्किल में, कभी किसी परेशानी में, तो कभी किसी और चीज़ में ज़िंदगी के साथ उलझे रहते हैं। लेकिन इस सब में वक्त कहाँ निकल जाता है, कई बार ऐसा लगता है कि पता ही नहीं चला वक्त कब चला गया, पता ही नहीं चला अभी तो जॉब शुरू की थी इतने साल हो गए, या फिर अरे ये साल तो अभी शुरू हुआ था 6 महीने में निकल गए। ऐसी बहुत सारी बातें कई बार दिमाग में आती है ना, कभी आपने सोचा है क्यों आती है? क्योंकि जिंदगी में ना एक जितना जरूरी सफर पर चलना होता है, जितना जरूरी आगे बढ़ना होता है, उतना जरूरी ना ब्रेक लेना भी होता है। जरा सा रुक जाना, जरा सा थम जाना, जरा सा बैठ कर सोचना, या सोचना भी नहीं तो बस ब्रेक लेना, रुक जाना, कुछ नहीं करना कुछ पल के लिए। यकीन मानिए ये एक ऐसी चीज है जिसके बारे में हमें ध्यान होता भी है लेकिन हम कई बार भूल जाते हैं, कई बार इसे जरूरी नहीं समझते हैं। पर जितना जरूरी जिंदगी में आगे बढ़ना है उतना ही जरूरी कभी कभी रुक जाना भी है।

हर वक्त दौड़ना ही जिंदगी नहीं है, कभी ठहरना भी सफर का हिस्सा होता है। बस यही समझना बहुत जरूरी है जिंदगी के लिए। आकाशवाणी एफएम रेनबो पर आप दीपिका के साथ हैं। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं आशियाना। जिंदगी में दिन रात जिम्मेदारियों, सपनों और उम्मीदों के बीच हम उलझे रहते हैं। कभी घर की चिंता, कभी पढ़ाई की चिंता, कभी नौकरी का प्रेशर, कभी रिश्तों की जिम्मेदारियां, कभी आने वाले कल को लेकर जो सपने सजाए हुए हैं उनके टूटने बिखरने का डर, कभी इस बात की टेंशन कि जो सोचा था वो हो नहीं रहा है और जो हो रहा है ये तो सोचा ही नहीं था। मिलाकर बहुत कुछ जिंदगी में ऐसा होता है जो हमें उलझा देता है और इस भागदौड़ में हम खुद से दूर चले जाते हैं। पर बहुत जरूरी है जरा सा ब्रेक लेकर, जरा सा थम कर, जरा सा रुक कर कुछ पल ठहर जाना। ठहर जाने से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप एक लंबा सा ब्रेक ले लें, कामकाज करना छोड़ दें। जाहिर सी बात है जिंदगी जीने के लिए काम करना, जिम्मेदारियां निभाना सब कुछ बहुत जरूरी है, पर हाँ कभी कभी ब्रेक लेकर वो चीज़ें करना जो आपको पसंद हो वो भी ज़रूरी है, और कभी कभी ब्रेक लेकर कुछ भी ना करना ये भी ज़रूरी है। जिंदगी में कभी कभी एक ब्रेक ज़रूरी है, इस बात को याद रखिए, क्योंकि किताब का हर पन्ना अगर हम बिना रुके पलट देंगे तो कहानी का मज़ा कहाँ आएगा।

जी हाँ, आकाशवाणी एफएम रेनबो आपके साथ बना हुआ है। यहाँ पर दीपिका का साथ प्रोग्राम आप सुन रहे हैं आशियाना। बातें हो रही हैं कि क्यों जरूरी है जिंदगी में कभी कभी जरा सा ब्रेक लेना। जैसा मैंने कहा, अगर किताब का हर पन्ना बिना रुके पलट देंगे तो कहानी का मजा कहाँ आएगा। अब आप खुद सोचिए, अगर म्यूजिक में भी जरा ठहराव ना हो तो फिर कहाँ वो मिठास रह जाएगी। कुल मिलाकर जिंदगी का हाल भी कुछ ऐसा ही है, और बहुत जरूरी है कि आप हल्का, मतलब थोड़ा सा जो ब्रेक है वो कभी कभी जिंदगी में जरूर लें। अब आप सोच रहे होंगे कि ब्रेक लेने का यहाँ पर मतलब क्या है। तो ब्रेक लेने का मतलब बहुत सिंपल है कि कुछ दिन, कुछ वक्त आप ऐसा ना सोचे कि मुझे कल क्या करना है, मुझे आज क्या करना है, वो टू डू लिस्ट, वो आने वाली प्लानिंग या फिर वो टेंशन, रोजमर्रा के अपने टास्क, इन सब से जरा ब्रेक लें, इन सब से जरा ठहर जाएं। अगर लग रहा है तो एक ट्रिप पर जाएं, फैमिली के साथ जाएं, सोलो ट्रिप पर जाएं। बहुत दिन की छुट्टी नहीं ले सकते हैं या बहुत लंबा ब्रेक नहीं ले सकते हैं, तो एक दो दिन के लिए ही कहीं होकर आएं, पर थोड़ा सा, छोटा सा ब्रेक जरूर जिंदगी में बीच बीच में लेते रहें।

0: चाय बड़ी है मात।
1: पता का चाय, गजब का स्वाद।
0: दादी दादी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मात।
1: पता का चाय, गजब का स्वाद।
2: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
3: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
2: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
3: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
2: और विनर्स को क्या मिलेगा?
3: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकेंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
2: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही
4: www.dellytalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
5: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर 0 अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना 0 बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
6: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
7: हर घर सूर्य घर।
8: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
9: जिंदगी परीक्षा के लिए नहीं है, हमारे जीवन को बनाने के लिए शिक्षा एक माध्यम है।
8: परीक्षा से जुड़े किसी भी प्रश्न या समस्या के समाधान हेतु NCPCR द्वारा आयोजित लाइव स्ट्रीमिंग सेशन में विशेषज्ञों से सीधे बातचीत करें, जो कि 23 अप्रैल से लगातार चल रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
10: आकाशवाणी FM रेडियो दीपिका के साथ है, आप प्रोग्राम आप सुन रहे हैं आशियाना।

अक्सर ना हम ब्रेक की जो इम्पोर्टेंस है वो समझ नहीं पाते, या फिर हमें ब्रेक लेना गलत लगता है। हमें लगता है अब रोज़मर्रा के काम तो करेंगे ही, आखिर ब्रेक क्या होता है या फिर ब्रेक क्यों ज़रूरी है। कई बार अगर कोई कहता भी है कि टेक अ शॉर्ट ब्रेक या फिर ऐसा कुछ भी जिसमें जिक्र होता है ज़रा सा ठहरने का, तो हम उसे गलत समझने लगते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें समझ ही नहीं आता कि आखिर ये ब्रेक इतना ज़रूरी क्यों है। हालांकि आजकल लोग वर्क लाइफ बैलेंस की बात करने लगे हैं, काफ़ी हद तक इन चीज़ों को समझने लगे हैं, पर ब्रेक का मतलब सिर्फ काम से ब्रेक लेना नहीं है। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है, ब्रेक का मतलब उन थॉट्स से भी ब्रेक लेना है जो आपको परेशान कर रही हैं, वो थॉट्स जिनकी वजह से आप परेशान हैं, आप स्ट्रेस में हैं, या फिर जिनकी वजह से आपको अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। क्योंकि हमें लगता है कि थकान सिर्फ फिजिकली होती है, लेकिन नहीं, मेंटली भी बहुत थकान होती है। और जब दिमाग थक जाता है ना, तो बहुत ज़रूरी होता है ब्रेक लेना। और अगर दिमाग नहीं भी थके तो उस थकने का इंतज़ार मत कीजिए, खुद को बीच बीच में थोड़ा ब्रेक दीजिए, थोड़ा पैम्पर कीजिए, क्योंकि ज़िंदगी में ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है। बार बार मैं इस बात को रिपीट कर रही हूँ, बार बार इस बात को आप तक पहुँचा रही हूँ, ताकि आप समझें कि कभी चलना, कभी रुकना, कभी मुस्कुराना, ज़िंदगी जीने का असली मतलब यही है।

आकाशवाणी एफएम रेनबो पर आप सुन रहे हैं दीपिका की आवाज़ प्रोग्राम है आशियाना। बातें हो रही हैं कि क्यों ज़रूरी है ज़िंदगी में ज़रा ब्रेक लेना, क्योंकि ज़िंदगी में आगे बढ़ने की अहमियत तो आपको सब बताएगी।

सकते हैं। जिंदगी में बहुत ज़रूरी है ब्रेक, कभी कभी शाम को छत पर बैठकर ढलता सूरज देखने के लिए, कभी कभी एक कप चाय के साथ अपने ख्यालों से मिलने के लिए, कभी कभी किसी खामोशी में बस खुद को महसूस करने के लिए। अब ब्रेक की जब बात चलती ना, तो बहुत सारे लोगों को ये वीकनेस लगता है कि ब्रेक लेना तो कमज़ोरी है, अरे मैं ब्रेक ले लूँगा तो मुझे वीक नहीं समझेंगे अगर मैं इस बात के लिए रेस्ट करूँगा या फिर इस बात के लिए इनिशिएट करूंगा कि मुझे ब्रेक लेना है तो मुझे वीक समझा जाएगा। पर नहीं, पहली चीज आपको ये थॉट ही दिमाग से निकालना है, ब्रेक लेना कमजोरी नहीं है, ब्रेक लेना खुद को फिर से संवारने का एक मौका है। पर फिर भी अगर कोई इसे आपकी कमजोरी समझे तो उसे समझने दीजिए, क्योंकि कोई आपके बारे में क्या सोचता समझता है उससे बहुत जरूरी ये है कि आप खुद को सही तरीके से समझें।

0: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
1: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात। हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
2: तो पार्टी शुरू हुई है।
0: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
0: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
0: म्यूजिक मस्ती।

आकाशवाणी एफएम रेनबो, आप दीपिका के साथ यहाँ पर बने हुए हैं और प्रोग्राम यहाँ पर सुन रहे हैं आशियाना। बातें हो रही हैं कि आखिर क्यों कभी कभी जिंदगी में ले लेना चाहिए थोड़ा सा छोटा सा ब्रेक, जिसे कोई आपकी कमजोरी समझे तो आपको उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, या जिसमें खुद भी आपको वीक महसूस नहीं करना चाहिए। अब बात आ जाती है कि आखिर ये ब्रेक लेना इतना जरूरी क्यों है, या फिर क्या हम ये ब्रेक लेंगे तो उससे हमारे रूटीन पर या फिर हमारे जो भी परेशानी है उस पर कोई असर पड़ेगा। तो देखिए, ब्रेक लेने से ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप अगर किसी बात से परेशान हैं तो वो परेशानी ठीक हो जाएगी। आप और मैं दोनों जानते हैं कि ब्रेक लेने से परेशानी ठीक होने का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हाँ, ब्रेक लेने से आप खुद थोड़ा बेहतर महसूस करेंगे, और जब आप बेहतर अंदर से महसूस करते हैं तो किसी भी सिचुएशन में आप अच्छा फील करते हैं और उस सिचुएशन को अच्छे से डील करने की भी हिम्मत रख पाते हैं। तो ऐसे में ब्रेक का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि लाइफ में परेशानी चल रही है, मैंने ब्रेक ले लिया, बस अब सब सही ठीक हो जाएगा, सब सही हो जाएगा। हम जानते हैं ऐसा नहीं हो सकता, हम सब मैच्योर हैं, एडल्ट्स हैं, समझते हैं कि नहीं, ब्रेक लेने से कुछ भी ठीक हो जाएगा ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, ब्रेक लेने से आपकी मेंटल हेल्थ पर जब असर पड़ेगा, अच्छा असर पड़ेगा, जब ब्रेक लेने से आप खुद को थोड़ा वक्त देंगे तो आप समझ पाएंगे कि ये क्यों जरूरी है। अब मैं कितना भी यहां से आपको बोल लूं ना, या फिर कोई भी कितना भी आपको समझा ले, लेकिन जब आप ऐसा करके देखेंगे ना, वो जो छोटा सा विराम है, वो जो छोटा सा ठहराव है, जब आप वो लेकर देखेंगे ना,

तब आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगा कि क्यों वो ज़रूरी था। ब्रेक ना केवल आपकी फोकस को इंक्रीज़ करता है, आपकी क्रिएटिविटी को इंक्रीज़ करता है, आपकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करता है, बल्कि आपको बहुत सारी चीज़ें जो आपने सोचना छोड़ दी हैं, या फिर कोई आपका भूला बिसरा सा ख्वाब है, कोई आपका ऐसा शौक़ है जो आप बहुत टाइम से नहीं कर रहे हैं, उसे भी याद दिलाता है। तो ये जो छोटा सा ब्रेक है ना, ये है तो छोटा सा, लेकिन इसके फ़ायदे बहुत बड़े, और ये आपको, मुझे, हम सभी को समझने की ज़रूरत है।

0: राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: कहानियाँ सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आकाशवाणी एफएम रेनबो दीपिका के साथ बना हुआ है आपका साथ, या यूं कहूं दीपिका के साथ बना हुआ था आपका साथ, क्योंकि अभी वक्त हो गया है इस प्रोग्राम में आपसे इजाजत लेने का। जी हाँ, अभी के लिए मुझे आपसे इजाजत लेनी होगी, पर कोई बात नहीं, दोबारा जुड़ूंगी मैं आपके साथ, लेकर आऊंगी 4 बजे से प्रोग्राम अल्फा जैन, और यहाँ 3 बजे से आप रेडियो डॉक्टर सुनेंगे। दीपिका को इजाजत दीजिए। जाते जाते एक बार फिर से कह रही हूँ, जिंदगी में कभी कभी रुकना, कभी कभी ठहरना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिंदगी जीना बहुत जरूरी है। और जब जिंदगी की किताब के सारे पन्ने आप बिना रुके पलटते जाते हैं, तो आप खुद बताइए, क्या आप उस कहानी को जी पाते हैं? नहीं, उस कहानी को जीने की कोशिश कीजिए। उन पन्नों को कभी कभी तेजी से तो कभी कभी जरा रुक कर पलटिए, और अपनी कहानी में कुछ ऐसे किस्से जरूर जोड़िए जिन्हें याद करके आगे आप

खुशी मिले या फिर जिन्हें जब आप सोचे तो आपके चेहरे पर बहुत ही खूबसूरत सी बहुत ही प्यारी सी मुस्कुराहट आ जाए, क्योंकि आपके लिए जिंदगी को जिंदगी बनाना आपकी ही जिम्मेदारी है। कौन क्या कहेगा क्या करेगा आपको नहीं सोचना है, आपको जिंदगी जीना है, जिंदगी के साथ भागना भी है, लेकिन कभी कभी जरा रुक भी जाना है, जरा थम भी जाना है। फिलहाल इसी बात के साथ दीपिका को दीजिए इजाजत।

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के।
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद के साथ बैठक की, देश की आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं की समीक्षा की। केंद्र ने खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग साइज लागू किए, इसका उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और एक समान पैकेजिंग को बढ़ावा देना है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से

0: बातचीत की। कहा दोनों देश खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए निकट सहयोग कर रहे हैं। कुवैत और बहरीन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमले से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। जापान में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जापान को हराकर अंडर 18 एशिया कप जीता। भारतीय महिला टीम ने कांस्य पदक हासिल किया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक उथल पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए कई विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से पड़ने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित व्यापक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। सभी सदस्यों ने सुधार यात्रा को और गति देने तथा जीवन यापन और व्यापार में सुगमता सुनिश्चित करने के लिए अपने विचार साझा किए। आर्थिक सलाहकार परिषद एक स्वतंत्र निकाय है जो भारत सरकार विशेष रूप से प्रधानमंत्री को आर्थिक और संबंधित मुद्दों पर सलाह देती है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति है और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में विकसित भारत के लिए युवा माई भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को ये मंच प्रदान किया है।
1: देश का 65 पॉपुलेशन बिलो 35 है, यानी कि देश युवा देश है। ये देश की युवा की शक्ति को विकसित भारत के राह पर ले जाने के लिए संयोजने का काम नरेंद्र मोदी जी ने करा है।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और नेपाल लंबी और खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग कर रहे हैं और दोनों देश संकट के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ बैठक के दौरान डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध जीवंत, जनसंबंध, सीमा पार संपर्क तथा साझा सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं की मजबूत नींव पर बना है।
2: कोलैबोरेट क्लोजली टू मेंटेन सिक्योरिटी अलोंग एंड यूनिकली ओपन बॉर्डर।
3: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
0: श्री खनाल ने कहा कि भारत नेपाल का सबसे महत्वपूर्ण साझेदार है और नेपाल ने भारत को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रतिबंधों की धमकी देकर भारत की संप्रभुता को कमजोर करने का कोई भी प्रयास उल्टा पड़ेगा। सेंट पीटर्सबर्ग में श्री पुतिन ने स्वतंत्र निर्णय लेने और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि भारत ने बाहरी दबाव की परवाह किए बिना हमेशा अपने हितों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिए हैं। श्री पुतिन ने कहा कि रूस और भारत के संबंध आपसी विश्वास पर आधारित हैं और व्यापार से कहीं आगे तक हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कार्यक्रम सहित संयुक्त अनुसंधान और विकास परियोजनाओं में सक्रिय रूप से शामिल हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने कानूनी माप प्रणाली के अंतर्गत खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग लागू की है। इससे बाजार में अधिक पारदर्शिता और एक रूपता आएगी। उपभोक्ता कार्य विभाग ने

0: खाद्य तेलों और घी की शुद्ध मात्रा तथा मानक पैक आकार निर्धारित करने संबंधी मानक संचालन प्रक्रिया में संशोधन किया है। स्वीकृत पैक आकार 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 से 5 किलो, 15 और 20 किलो हैं। इस पहल का उद्देश्य बाजार में विभिन्न पैकेज आकारों की बढ़ती संख्या कम करना है। इससे उपभोक्ताओं के लिए कीमतों की तुलना और सोच समझकर खरीदारी करना आसान हो जाएगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से लंबित रेलवे परियोजनाओं का समाधान होने से राज्य में रेलवे अवसंरचना विकास के एक नए युग की शुरुआत होगी। कोलकाता के नबन्ना में श्री वैष्णव ने बताया कि वर्ष 2026-27 के रेल बजट में पश्चिम बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। रेल मंत्री ने अगले 5 वर्षों में कोलकाता मेट्रो के लिए 60 नई रेलगाड़ियों को शुरू करने की भी घोषणा की।
1: मेट्रो के लिए इसकी न्यू ट्रेन्स, नई जनरेशन की ट्रेन्स अगले 5 वर्षों में इंडक्ट करेंगे। नई जनरेशन की ट्रेन्स आने से कोलकाता के निवासियों को बहुत अच्छी फैसिलिटी मिलेगी, वो भी एक बहुत बड़ा आगे स्टेप लिया जाएगा।
0: संचार और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री पेम्मा सानी चंद्रशेखर ने आज आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के नारकोदुरु गांव में समृद्धि केंद्र का लोकार्पण किया। ये गांव को डिजिटल व्यवस्था में परिवर्तित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नारकोदुरु एकीकृत ग्रामीण विकास मॉडल अपनाने वाला भारत का तीसरा और तेलुगु भाषी राज्यों का पहला गांव बन गया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में 4th लेवेंडर महोत्सव का शुभारंभ किया। महोत्सव की थीम है लेवेंडर गोज ग्लोबल। 2 दिन के इस महोत्सव में बैगनी क्रांति की उपलब्धियों और क्षेत्र में बढ़ते लेवेंडर उद्योग को प्रदर्शित किया गया है। इससे लेवेंडर की खेती और उद्यमिता की बढ़ती सफलता का पता चलता है। राज्य के किसानों और युवा उद्यमियों के लिए लेवेंडर की खेती ने आजीविका के नए अवसर सृजित किए हैं। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ और रजनीश अग्रवाल ने आज नामांकन पत्र भोपाल में भरा। कांग्रेस ने पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन को उम्मीदवार बनाया है। उधर आंध्र प्रदेश में जन सेना पार्टी के लिंग मनेनी रमेश ने अमरावती में नामांकन दाखिल किया। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन झारखंड के 2 दिन के दौरे पर आज रांची पहुंचे। उन्होंने कहा कि झारखंड उनकी जन्मस्थली और दूसरा घर है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और पार्टी के अन्य पदाधिकारियों तथा कार्यकर्ताओं ने श्री नवीन की यात्रा को संगठन के लिए महत्वपूर्ण बताया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन EIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
2: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। कुवैत और बहरीन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर ईरान के मिसाइल हमलों से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ गया है। एक रिपोर्ट।
3: खाड़ी देशों और अमरीका के एयर डिफेंस सिस्टम ने ज्यादातर मिसाइलों को हवा में ही नाकाम कर दिया। इससे जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ। होर्मुज जलडमरू मध्य के पास ईरानी ड्रोन की गतिविधियों की खबरों के बाद अमरीकी सेना ने केशम द्वीप और गोरुक में ईरान के राडार और निगरानी ठिकानों को निशाना बनाया था, जिसके कुछ ही घंटों बाद ईरान ने ये हमले किए। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि लगातार जारी अभियानों से ईरान की मिसाइल क्षमता काफी कम हो गई है। हालांकि ईरान ने इस दावे को खारिज कर दिया है। संघर्ष विराम पर बातचीत रुकी हुई है और क्षेत्र में तनाव लगातार बढ़ रहा है। दुबई से विनोद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: भारत ने कहा है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपनी अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे दावे फैलाने के लिए कर रहा है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने चेतावनी दी कि पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए।
4: I'd like to remind Pakistan that being a member of the...
5: मैं पाकिस्तान को याद दिलाना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य होना एक बड़ी जिम्मेदारी है। यह पक्षपाती और झूठी बातें फैलाने का मंच नहीं है। मैं ये बात साफ साफ कहना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान की खोखली बयानबाजी और झूठे दावों से ये बुनियादी सच्चाई नहीं बदलेगी।
0: जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि मादक पदार्थ मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान एक सशक्त

0: जन आंदोलन के रूप में उभरा है। किश्तवाड़ में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि 19 जिलों में 56 दिनों से जारी इस अभियान ने बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित किया है। उपराज्यपाल ने कहा कि प्रशासन मादक पदार्थों के कारोबार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के फिरोजपुर जिले में हुई दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका सड़क पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत हो गई और 22 लोग घायल हो गए। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज का 353वां राज्याभिषेक समारोह आज पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। मुख्य कार्यक्रम रायगढ़ जिले के महाड तालुका में स्थित रायगढ़ किले में आयोजित किया गया। 6 जून 1674 को शिवाजी का ऐतिहासिक राज्याभिषेक हुआ था। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जून कर दी है। सीबीएसई ने बताया कि विद्यार्थी अब कल मध्यरात्रि तक अपनी आवेदन जमा कर सकेंगे। इससे पहले आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि आज तक ही निर्धारित थी। मौसम विभाग ने कल तटीय कर्नाटक, केरलम और माही में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर राज्यों के अधिकांश हिस्सों, आंतरिक कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में अगले 2 दिनों तक तेज बारिश की संभावना है। इस बीच दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर में आगे बढ़ गया है। जापान में भारतीय अंडर-18 पुरुष टीम ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। फाइनल में भारत ने जापान को 4-1 से हराया। आशीष तानीपूर्ति ने 3 और कप्तान केतन कुशवाहा ने 1 गोल किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय हॉकी टीम को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि टीम ने पूरे टूर्नामेंट में असाधारण कौशल और टीम वर्क का प्रदर्शन किया। उन्होंने अंडर-18 एशिया कप में कांस्य पदक जीतने पर भारतीय महिला हॉकी टीम को भी बधाई दी है। गोवा में भारत ने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। फाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 3-0 से हराया। भारत ने 6ठी बार ये खिताब अपने नाम किया है। अहमदाबाद में विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप में रोहन ताइडे ने सब जूनियर आर्टिस्टिक सिंगल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है। भारत अब तक 6 स्वर्ण पदक सहित कुल 7 पदक जीत चुका है। पदक तालिका में भारत शीर्ष पर बरकरार है। न्यू चंडीगढ़ में भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 3 विकेट पर 368 रन बना लिए हैं। कप्तान शुभमन गिल 103 और ऋषभ पंत 50 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। केएल राहुल ने 100 रन और साई सुदर्शन ने 81 रन की पारी खेली। ये टेस्ट मैच विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा नहीं है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद के साथ बैठक की। देश के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं की समीक्षा की। केंद्र ने खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग साइज लागू किया। इसका उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और एक समान पैकेजिंग को बढ़ावा देना है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत की। कहा दोनों देश खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए निकट सहयोग कर रहे हैं। कुवैत और बहरीन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमले से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। जापान में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जापान को हराकर अंडर-18 एशिया कप जीता। भारतीय महिला टीम ने कांस्य पदक हासिल किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi holds meeting with the Economic Advisory Council, reviews country's economic transformation and long-term development priorities. Centre introduces standard edible oil pack sizes to enhance transparency and promote uniform packaging practices. External Affairs Minister S. Jayshankar holds talk.

0: under Dharmanagar Police Station in Tripura. President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi has expressed grief over the mishap in Firozpur district of Punjab. The 353rd coronation ceremony of Chhatrapati Shivaji Maharaj celebrated with great enthusiasm across Maharashtra. Back home, Nagaland Governor Nandkishore Yadav encourages young people to remain confident, embrace learning and seize every opportunity to build successful careers. Manipur Chief Minister Yumnam Khemchan Singh says, in line with the vision of Prime Minister Narendra Modi, greater emphasis should be placed on the use of organic fertilizers in place of chemical fertilizers. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar says, India and Nepal collaborate closely to maintain security along their long and uniquely open border. Union Minister Dr. Jitendra Singh inaugurates the 4th Lavender Festival at Government Degree College in Bhadarwa town of Dora district of Jammu and Kashmir. Singapore government orders 3 social media platforms to block access to 14 posts believed to have originated from China. Tensions across West Asia escalated sharply after Iran launched ballistic missiles towards United States military facilities in Kuwait and Bahrain, prompting a coordinated air defense response by Gulf states and American forces. Ukraine launches major drone attack on St. Petersburg, residents advised to stay indoors. And in hockey, the Indian men's team lifts the Under-18 Asia Cup for the third time, crushing host Japan in the finals. That is all we have in this news headlines.
1: Hello.
2: Rajesh ji, main police thane se bol raha hu.
1: फिर से
3: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले. आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे.
4: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे.
1: सर इतने कहाँ से?
4: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
3: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में.
1: 2 लाख
5: क्या हुआ पापा?
1: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं.
3: अरे
1: काट दिया.
5: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है.
1: फ्रॉड?
5: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें. अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
1: तो पैसे गवाओगे,
6: RBI कहता है.
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए.
8: FM Tracoban
9: 103 MHz.
8: News, music and entertainment.
9: This is FM Tracoban.
8: FM 103 MHz.
0: Good evening. Itu Akashwani Kohima FM Tracoban 103 MHz pra program di thakya huni ase. Aritya ko huni hobo Hindi film gan program Purani Git. So RJ Jacob apni an sab ke welcome kuri ase, swagat kuri ase, namaste aro salam koi na janai di ase. আপনি কেন লাগা ফিডব্যাক সাজেশনস নহলে থটস থাকিছে কলে এইটো নম্বৰতে লিখিব পাৰে 9436805333 আৰু লিখিব কাৰণে কোড আছে FM space F. তো লিচনাৰ্ছ খান প্ৰগ্ৰাম চুৰু কৰি দিয়া আছে. পহিলা গীত শুনিব আপোনালোকে আশে ভোচলি, মহম্মদ ৰফি, কিশোৰ কুমাৰ আৰু উষা মংগেশকাৰ লগাব আছে. ফিল্ম আছে দ্য বাৰ্ণিং ট্ৰেইন.

program bhi se scribble time ho ase aro je nishina apni khala ga message kum ba ase to moi puri di ase ya de likhi gina pata ase hello RJ Jacob sir good evening after long long time turn my favorite song Pardesiya from Mr. Natwarlal movie thank you for playing that from Balipata Birin Hanse Andrika Timungpi Divi Janka Hansepi and Archilin Hansepi Huina Likhi Ase. Well, thank you so much for tuning and thank you so much for writing. Ariyate, good evening FM Tragupan family Huina Sur Radio Listeners Group Tekhan Mi Likhi Gina Patai Se. Well, thank you so much. Aro yade Durgesh Naganpuri, Radhesham Naganpuri, Vandana, Bhavna, Bindu, Golu, Kosumbai, Babu, Divyans, Suresh Kumar Dakshi, Suresh Verma, Rishabh Kanak, Bhavna Verma, Premlal Verma, Nikesh, Dharmendra, Aro Mamta Bai Verma, Tagan Miliki Napatai se. Well, thank you so much, Apingan Sabke, Bhot Bhot Daniavat, Ap Sabiko, for your message. To समय हो गया अभी अलविदा कहने का मुझे तो मैं लास्ट गाना सुना देता हूँ लास्ट गाना होने वो थे अपने लोग के आशा भोसले मोहम्मद रफ़ी किशोर कुमार और उषा मंगेशकर लगा वास्ते से फिल्म से शान गीत लिखे हुए से अनंत बख्शी म्यूजिक दिया हुए से आर डी बर्मन और एक गीत लोग थे प्रोग्राम विशेष कुरिया हो किंतु आ कल आपको छः बजे हुआ लोग के अपने गान एफ एम ट्रैक वन होने वो पाबो सो विशिंग यू ऑल वंस अगेन A very good night and stay safe.